साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: ilawa ge eme mashuru baeto ge terega eru ge eme mashuru ve gendia lem baeto ge terega tera mera rishta he purana ya dil diya he jaan pi tuje denge mifada kadita lawa nage ken mashuru ve gendia
1: dard maine kaisa le liya ho dard maine kaisa le liya
0: mi lavaya ki varang hitama veri lavai namaves mi varang avas ridamma ka tayar ko fawalave mi edwaswar ke hindi film to ke music kanga vara bodu badale kama ves pune vidane diya dil mi lava kiya fawani himesh reshamiya adi himani kapoor music hada fawes wani himesh reshamiya dem mi lavai ke lemveri ki samir mi geturun mi lava himene film ki dil diya he mi film me himesh reshamiya ge khasa sufi rock style tayar ko fawalave film avara boda me lavaya adi me film ge ehen lavata ves makbul ve gendia
1: chain mera le liya
2: lagta nahi
0: hai dehas havana har ke film dil diya hai ki leadung imran hashmiya geeta basar adi ashmit patel fen gendia filme me film ge muhimmu baatakun mitun chakrapati ge iturun उदित कुआस्वामी वेस्फेनिगेंदिया दिल दिया है कि तिनेस्कन लोबीगे वाह के किया दे फिल्में मी फिल्मों के दिल दिया है लवा मकबूल वेगें गोस्फवायरो मी लवा आमुंगे तेरेगा बड़ मकबूल कमें होदा फवानी देहाहु के आहरतोगा एगो तुम दिल दिया है मी फिल्म रिलीज को फमिवनी देहास हवना आहरो ए आई की का मी लवा आमुंगे मेदुगा बड़ मकबूल कमें होदी

0: नुआ दी है 1 MHz दी वही FM मैं दुरो नमा दो वागो तु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

मी नवाजते कनोदी हाय कन कोई मशहूर बॉलीवुड के फिल्मो जीने की राह के एम मकबूल लवा आम को मिलवा मशहूर फवनी आने से उसके आए बाहर नुवता बाली मस्तानी है मेरी महबूबा मिगोता मिलवे की इंडिया के रूहानी अटकेवेरिया मोहम्मद रफी की आदि फवा वरंग असर कत लवे लवागे म्यूजिक कंपोज कुरी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर उनका मवा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल मिलवागे रीति लेंग हदा फवनी आनंद बख्शी फिल्म का मिलवा फेनिकेंदनी जितेंद्र आदि तनुजा

0: खुमरिया को नींदम एक जाए।
1: ये चांद का रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने
2: रीति अबदु सरीति
3: दिव्य एफएम 91.1 MHz।
4: I love you.
5: दुआ को सारे गीतों को जैसा रोबा दान था।
6: No.
5: Promise.
6: Promise.
7: एमी हूँ था अबादो एकु गवो मा बाउ दुवे।

0: ইসলামী উদারে হুম কুলদুমন্ত কামামেদ ফিকুর করুম
1: নুলান্ডাগে নিদা কোতলু
2: নুলান্ডা নুয়াত পেরট ফিশকি এগে দুশমনুগে কি বা রাক্কা তেরিউ মটকা আদিয়া খিলাফ কন্তেতকে কুরমন্দা মহে খাসকো রেগণুগে বাগুত তহুগা মিগতুং এসরুগে হাসিগণুং উফদা জেলিয়ে ফদা মাদায় বেনু কুগিং এসরুগে মুলি হাসিগণু ফরওয়ালা এই কিহিনিং হে কুরেবে সুয়াল জবাব দিনুমুগে কুরিং এসরু এ মাদা উফদা বেনু কুরাগুত বালালানং জেলিহিং হিওয়া মি মাদা এসরু দুকুরনি এসরুগে লোলা আঙ্গয়াদে মেদুগে সরহদ্দুগা হুন্ন কুডকুড লোবালকুং এসরু এ মাদা দুকুরনি এসরু নেওয়ালা বাগুতুগা মিগতুং জেলিয়াবারং এগ্গেং এ মাদ্যাং এসরুগে মুলি হাসিগণ্ডু নিভাকুরু মট্টকা মডুকোগ্গেং ওভে এ মাদ্দা এসরু দুকুরে এরুং বালা বেলুমং হিওয়ানি নিদা কোথড়ে গিতিরে গোয়িং হিং মিগতং আমল কোগ্গেং রেগণ্ডু এসরুগে দুশ্মনুগে কিব্যাং এসরু সালামেভে রাক্কা তেরেভে গানে মিগে ইতুরুং মি মাদ্দায়কি দুশ্মনু নং ওলুবালুমং এসরুগে হাসিগণ্ডুগে কুল বদল কোল্লুমা বেস বেনুকুরা মাদ্দায় দেফু ফেন্ন নিদাকু তলিগে তেরেগ উন্ন বিদ্যান সিফাওয়া মি উকুলুগে সববুং খালুবেনা এনুমেস এসরুগে দুশ্মনুগে ফারাতুং এসর রাক্কা তেরেকানলিবে এহেনি বেনুগে গিন বাবেত্তকি ওয়াসবেলুমুগে হিসু আর রঙ্গলো আদি বাহুগে জরিয়াং এসরুমেঙ্গে শিকার দেনগণ্ণ ইচ্ছক বাথি নুলন্ডা জেলিকু তলুগে তেরেগ উন্নইরু বেনুগে ওয়াসদুমুগে হিসুন সালামেবে গণেবেতি লন্ডা জেলিকু তলুগে তেরেগ উন্নইরু ಕಾರಿನ್ ಲಾಫ ವೆಂದಿಯಯಸ್ ಕೊತಳುಗೆ ತಿರೇಗ ಲಂಡಾ ಫಿಲಾವಿಕ್ಕಂ ಎಸುರಕ ದೆನೆಯನ್ನು ಗಣಿವೆ ಸುವಾಲಕಿ ಆದಯಾ ಖಿಲಾಫ್ ಸಲಾಮತಿ ಮಿಫಿಯವಳು ಎಳುಮುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ನೂ ಲಂಡಾ ದೆನೆಗತಿ ಕಿಹಿನೆಯೇ ಎಸರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎ ದುಷ್ಮನುಕಂ ಗವ ವೆಂಗ್ ಶಿಕಾರ ಕುರನಿ ಏಗೆ ವಸ್ದೂಮುಗೆ ಹಿಸ್ಸು ಬೇನು ಕುಗ್ಗೆಂಕಂ ಎಸುರಂಗೆಂಗುನಿ ಕಿಹಿನೆಯೇ ಅದಿ ಎ ಜಲಿ ಕೊತಳುಗೆ ತಿರೇಗ ಉನ್ನೈರು ಎಸರುಗೆ ಕ್ಯಾರಿನ್ ಲಾಫ ವೆನ್ ದತುರು ಕುರಾಯರುವೆಸ್ ಏಗೆ ವಸ್ ವೆಣ ನುದುವಾನೇಕಂ ಇಂಗಿ ಮುಳಿ ರೇಗಂಡು ರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂಗ ಹೇದ ಕುರಾನೆ ಗುಯ್ ಎಸುರಂಗಿಂಗುನಿ ಕಿಹಿನೆಯೇ ಶಕ್ಯ ನೆಗ್ಗುತುಗ ಆದಾಗೆ ಎಫದ ಮಹಕಂ ಎಫದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಗ್ ಉಫದ್ದಾಗಿಂಗ್ ಏಗೆ ಹಸಿಗಂಡು ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ಗೆ ತೆರೆಗ ರಕ್ಕಾ ಕುಫಾನೆ ಕಮಕ ಎಕಕುವ ಸಿಯನ್ನು ಕುರಾನೆ ಎಫದ ಫುರಿಹಮ ನಿಜಾಮೆಂಗ್ ಏಗೆ ಹಸಿಗಂಡುಗ ಹುರಿದಾನೆ ಕಮ ಕಬೂಲೆನ್ನು ಕುರಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಸಾಫು ಕೊಂಗೆಂಗೆ ಗುತುಗ ಮೀ ಕೆಮಫ್ಲಾಜ್ ನುವತ ಕುಲ ಬದಲ್ ಕೊಲ್ಲುಮುಗೆ ಬತ್ತರೆ ಹಮ ಯಕೀನುಮೆಸ್ ಎಂಗೆ ಕಮಕಿ ಹಿಕ್ಮೆತ್ತೆರಿ ಫರಾತೆಗ್ಗೆ ಫುರಿಹಮ ಬೆಲ್ಲೆಮುಗೆ ದಶುಂ ಮೆನುವಿ ಮಿಫದ ಫುರಿಹಮ ನಿಜಾಮೆ ಕಾಯಂ ನುಕುರವೇನೇಕಂ ಅದಿ ಮಿಫದ ಫುರಿಹಮ ನಿಜಾಮೆಂ ಅಮಿಲ್ಯೆಂ ಹೋದಾಗತುಮಕಿ ಎಫದ ಆರೆ ಬಾರೆನ್ನೆ ಕುಡಕುಡ ಮಹಕ ಕುರವೇನೇಕಮೆನ್ನುಂಕಂ ಎಯಿ ಎಮಸ್ ಹಲ್ಗು ಕುರವಿ ಅಲ್ಲೋಹ್ ಸುಭಾನಹು ವತಾಲಾಗೆ ಉಫೆದ್ದೆಮುಮೆ ಎಯಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಕುಳದೂಮಂತಕಮುಗೆ ಹೆಕಿತಹುಗೆ ತೆರೆಂಬಾಕಮೆ